चल मम्मा ओ गया मम्मा नाउ ट्यून चेंज काइन लगलास ओनली इंग्लिश है।